नमस्तल प्रणाम समस्त प्रणाम से जनकाम से काम सम सम को काम से सदा सच्चे दान में सत्य नाम से दिन और जाय बोलते चात्र चात्र वर्ती चात्र चात्र भुगते स्वयंभ सुभंग श्रवदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग विभूते एको ओंकार सदगुर प्रसाद अवतार खासे।

चरण शरंज बसद भवानी, ब्रह्मा विषय अंत नहीं पायो, नेत नेत मुख चार बतायो। कोट इंद्र

गंधर्व जाच रच सुबचारा भूत भवक भवन कहानी घट घट के पट पट की जानी तात मज जात न पाता एक रंग का हूं नहीं राता सर्व ज्योत के बीच समाना सब हूँ सर्व ठौर पहचाना काल रहत अन काल स्वरूपा अलख पुरख अवगत अवधूता जात पात जय चेहना बरना अवगत देव अक्षय अन भरमा सबको काल सबन को करता रोग सोग दोकन को हरता एक चेत जह एक छिन ध्यायो काल फांस के बीच न आयो। तो प्रसाद कबित का तुहु सुचेत हो के चेतना को चार कियो का तुहु अचेत हो के सोवत अचेत हो का तुहु भिकारी हो के मांगत फिरत भी कहूँ माँ दान हो के मांगे धन देत हो कहूँ माँ राजद को दीजत आनंदान कहूँ माँ राजंत छीन शेत लेत हो कहूँ बेदरित कहूँ तास बेपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ जाच गंधर्व उरक कहूँ विद्याधर कहूँ भय किन्नर पिशाच कहूँ प्रेत हो कहूँ होय के हिंदू आ गायत्री को गुपत जपे हो कहूँ होय के तुर का पुकारे बांग देत हो कहूँ को बकाव होय के पुराण को पढ़त मत कहतु कुरान को निदान जान लेत हो कहूँ बेदरित कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पद विषि कहूँ इंद्र पद विषि पाई छीन लेत हो का तुहु विचार विचारत को विचारत हो कहूँ नेज नार पर नार के निकेत हो कहूँ बेदरित कहूँ तस विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ शस्त्रधारी कहूँ विद्या के विचारी कहूँ मारत हारी कहूँ नार के निकेत हो कहूँ देव बानी कहूँ शारदा भवानी कहूँ मंगला मिडानी कहूँ श्याम कहूँ सेत हो कहूँ धर्म धामी कहूँ सर्व ठौर गामी कहूँ जति कहूँ कामी कहूँ देद कहूँ लेत हो कहूँ बेदरित कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ जटाधारी कहूँ कंठी धरे ब्रह्मचारी कहूँ जो साधी कहूँ साधना करत हो कहूँ कान फारे कहूँ डंडी होय पदारे कहूँ फूक फूक पान को पृथ्वी पर धरत हो का तुहु सिपाही हो के सादत सिलाहन को कहूँ क्षत्रिय कैर मारत मरत हो कहूँ भूम भार को उतारो तो महाराज कहूँ भाव भूतन की भावना भरत हो कहूँ गीतनाद के निदान को बतावत तो कहूँ नृत्यकारी चित्रकारी के निदान हो का तुहु पयुग हो के पीवत पीवावत हो का तुहु मयुग कहूँ मद पान हो कहूँ माँ सुर हो के मारत मवासन को कहूँ माँ देव देवतान के समान हो कहूँ महादीन कहूँ द्रव के अधीन कहूँ विद्या में प्रवीण कहूँ भूम कहूँ भान हो कहूँ अकलंक कहूँ मारत मयंक कहूँ पूरन प्रजंग कहूँ शुद्धता की सार हो कहूँ देव धर्म कहूँ साधना के हरम कहूँ कुतस कुकर्म कहूँ धर्म के प्रकार हो कहूँ पवन हरि कहूँ विद्या के विचारी कहूँ जोगी जति ब्रह्मचारी नर कहूँ नार हो कहूँ छत्र धारी कहूँ छाला धारे छैल भारी कहूँ छक वारी कहूँ छल के प्रकार हो कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजाया कहूँ नृत्य के नचय कहूँ नर को आकार हो कहूँ वेद वाणी कहूँ कोक की कहानी कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो कहूँ बेन के बजाया कहूँ धेन के चरया कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो शोधता किसानों के संतन के प्राणों के दाता महादानों के निर्दोखी निरंकार हो निर्जोर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो के भूपन के भूप हो के दाता महादान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग शोक के मिटैया की दोमानी महामान हो विद्या के विचारों के अद्वै अवतारों के शुद्धता की सूरतों के शुद्धता की शान हो
जो बन के जालों के कालों के कालों के सतरन के सूलों के मित्रन के प्राण हो। कहूँ ब्रह्म बाद कहूँ विद्या को विखाद कहूँ नाद को ननाद कहूँ पूरन भगत हो। कहूँ बेदरीत कहूँ विद्या की प्रतीत कहूँ नीत अनीत कहूँ ज्वालासी जगत हो। पूरन प्रताप कहूँ एका

सर्व ठाउर एक से लगत हो तो प्रसाद सबये। श्रावक सो समूह सिधान के देख फिर घर जोग जति के सोर सुरादन सोध सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखत प्राणपति के श्री भगवान की भाई कृपा होते एक रति बिन एक रत्ती के माते मतंगन जरे जड़ संग अनूप तंग सुरंग सवारे कोटक तुरंग कुरंग से उदत पवन के गौन को जात निवारे। भारी भुजान के भूप विलीवित नावशीष ना जात बिचारे एते भय तो काम है भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देर दिशान को बाजर ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसति है राज हजारे भूत भविक भवान के भूपत कौन कने नहीं जात बिचारे श्रीपद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथ नंद आदम दास संयम ने अनेक विषेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान समान के पेख है पौन हार जति जद हार सब सो विचार हजार के देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है शुद्ध सुभा दुरंद वासो सासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत बंग हलैना हलेंगे तोर अरीन मरोर मासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पर श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार विचार सार की धार बछैया तोर देश मलिन मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चकचार लवैया साहेब श्री सब को सिर नायक जाचन एक सो एक दिवैया दानव देव फनी निशाचर भूत भगवान जपेंगे जीव जीते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जाय दुन पापन के पाव पुंज खपाएंगे सा समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सब लोग छपेंगे मानो इंद्र गजेंद्र नराधिप जौंत्र लोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाधिक दानिक स्वयंवर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विषण सचिव अंत फसे जम फांस बरेंगे जे नर श्रीपद के प्रस है पाग ते नर फेर न देह धरेंगे कहां भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भग ध्यान लगायो नाथ प्रिय लिए सास सुमंदन लोक गयो पर लोक गवायो बास की ओ बिख्यान सो बैठ गए ऐसे ही ऐसे

वाहन पूज सरियो सिर काहू ललिंग गरे लटकायो काहू लखियो हरा वाची दिशा मह काहू पछा को शीस निवायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन धायो पूरा क्रिया और जियो सब ही जाग श्री भगवान को भेद ना पायो तो प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अनछेद तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूभृत भांत चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोग शोक विदार कल काल कर्म विहीन सब कर्म धर्म प्रवीण अनखंड उतल प्रताप सब थापियो जय थाप अनखेद भेद अछेद मुख चार गावत वेद जय नेत निगम कहंत मुख चार बकत बेअंत अनभिज अतुल प्रताप अनखंड अमित थाप जय कीन जगत पसार रचो विचार विचार अनंत रूप अखंड अतुल प्रताप प्रचंड जय अंड ते ब्रह्मांड कीने सो चौदह खंड सब कीन जगत प्रसार अभ्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निपार के ब्रह्म विषण विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सिंध बिन नगेंद्र कई मच्छ कच्छ फनिंद्र कई देव आद कुमार कई कृष्ण विषण अवतार कई इंद्र बार बुहार कई वेद ओम गुचार कई रुद्र क्षुद्र स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप कई कोप का भणंत कई वेद भेद कहंत कई शास्त्र स्मृत बखान कहूं कतत ही सो पुराण कई अगन होत्र करंत कई उर्द ताप दुरंत कई उर्द भाव संन्यास कहूं जोग भेष उदास कहूं निवली कर्म करंत कहूं बौन हार दुरंत कहूं तीरथ दान पार कहूं जग कर्म उदार कहूं अगन होत्र अनूप कई न्याय राज विभूत कहूं शास्त्र स्मृत रीत कहूं वेद सिंह विपरीत कई देह देश फिरंत कई एक ठौर स्थंत कहूं कर जलमय जाप कहूं सत तन प्रताप कहूं बाज बने करंत कहूं ताप तनह सहंत कहूं ग्रह धर्म पार कहूं राज रीत उदार कहूं रोग रहत अभरम कहूं कर्म करत अकर्म कहूं सेग ब्रह्म स्वरूप कहूं नीत राज अनूप कहूं रोग शोक विहीन कहूं एक भगत अधीन कहूं रंग राजकुमार कहूं वेद व्यास अवतार कई ब्रह्म वेद रटंत कई सेक नाम उचरंत बैराग कहूं संन्यास कहूं फिरत रूप उदास सब कर्म फोकट जान सब धर्म नह पलमान इबिन एक नाम धार सब कर्म भरम विचार तो प्रसाद लगुन राज छंद जले हरि थले हरि उरे हरि बने हरि गिरे हरि गुफे हरि छिते हरि नबे हरि इहा हरि उहा हरि जिमि हरि जमा हरि अलेख हरि अभेक हरि अधोक हरि अद्वैक हरि अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सोतेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपाद हरि अमित्र हरि अमाद हरि अरोग हरि अशोक हरि अभर्म हरि अकर्म हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अदंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरि अभेव हरि अजेव हरि अछेव हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जपो हरि जल सुई थल सुई नदि सुई नद सुई वृषस्वई पतस्वई छेतस्वई ऊर्धस्वई भजस्वंग भजस्वंग रटस्वंग ठटस्वंग जिमे तुई जमा तुई मकी तुई मका तुही अभू तुई अभय तुई अछू तुई अछ तुही जतस्तुही प्रत

हुकमल हरि गज गद हाबिबु दारी की दुआ मसान बास करो ही करत है। घुगुमट वासी लगे डोलत उदासी मृग दरबर सदयु मोन सदय मरत है। बिंद के सदा दह हीज की पटैया दे बंदरा सदयु पाए नंगे ही फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवी ने ज्ञान के विहीन छीन कैसे के तरत है। भूत बने चारी छीन छौना सबे दुदाधारी पवन के हरि सो भुजंग जानियत है। तृण के भजैया दान लोभ के तजैया ते तो कवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नब के उड़या ताए पंछी की बटैया दे बगला बिडाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी पे बखानी ना है ऐसे ना प्रपंच मन भूला नियत है। भूम के बसैत आए भूचरी के जैया कह नब के उड़ैया सो चिरैया के बखानी है। फल के भचैत आए बांजरी के जैया कहे आदिश फिरैया दे तो भूत के पछानी है। जल के तरैया को गंगेरी सी कहत जग आखे भचैया सो चकोर समानी है। सूरज सिवैत आए कौल की बटाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कच्छ मत इंदुआ कह सब काल नाव काल जा ताल में रहते हैं। गोपीनाथ गुजर गोपाल सबे धेन जारी रिखी के नाम के महंत लही आते हैं। माधव भवर अटर को कन्हैया नाम कंस को बदैया जम दूत कही आते हैं। मूड रोड पीटत ना कूड़ता को भेद पावे पूजत न ताए जाके राखे रही आते हैं। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा प्रत पाल जम जाल ते रहते हैं। जोगी जटा धारी साथी सचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान कार भोग पया देह पैसा हते है। निवली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठाडे न बहते है। मानो फनिन देव दानो न पावे भेद भेद औकदेव नेत नेत का कहते है। नाचत फेरत मोर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करे वही करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरत तपत तेज इंद्र सन राजा भाव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न बेचारी सनत कुमार सी तपस्या नानत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरे फिराए फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्ण के ते वेद और पुराण के ते सिमरत समूहन के होए होए बिताए है। मोंदी मदार के ते असुनी कुमार के ते अंसा अवतार के ते काल बज भय है। पीर और पिकाम्बर के ते गने न परते ते भूमि ते होके फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र की छाया कई कोसलाव चलते है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देत बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से महीपा दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर दुर्योधन से मान धारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सच देकर अनेक तोपची कपट भेद पोष दी अनेक दानी वावत है शीश का। कहा भयो मल जब काटत अनेक दंड सोतना डंडात अष्टांग अथ तीस का। कहा भयो रोगी जब डायरो रहे और मंद देना मुंड निहरायो आज इसका। कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जाके दीस का। शीश पाट कत जाके कान में खजूरा धसे मुंड छाट कत मित्र पुत्र होके शोक सा। आग को चरैया फल फूल को भचैया सदा बन को भ्रमय और दूसना भोग सा। कहा भयो भेड़ जो घससी वृक्षण सा माटी को भचैया बोल पूछ लीजे जोग सा। कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेटे पर लोग सा। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाए ठाटे सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाँव भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठौर वास करे काग और चील देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न हुजे लीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जो गया बैरागी बने कबू संन्यास भेद बन कर दिखावई। कहूँ पौन हरि कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगा व्यवहारी कहूँ दंडधारी होके लोगन भ्रमावई। कामना अधीन पर नाचत नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई।
ਪੰਜ ਵਾਰ ਗੀਤਰ ਪੁਕਾਰੇ ਪਰ ਸੀਤ ਕਾਲ ਕੁੰਜ ਹਰਗਦ ਹਾਂ ਨੇਕਦਾ ਪੁਕਾਰ ਹੀ ਕਹਾ ਭਯੋ ਜੋ ਪੈ ਕਲਵਤਰ ਲੀਓ ਕਾਸੀ ਬੀ ਛੀ ਛੀ ਚੋਟਾ ਗੁਠਾਰਨ ਸੁਮਾਰ ਹੀ ਕਹਾ ਭਯੋ ਫਾਸੀ ਡਾਰ ਬੂੜਿਓ ਜਾੜ ਗੰਗ ਧਾਰ ਡਾਰ ਡਾਰ ਫਾਂਸ ਠੱਗ ਮਾਰ ਮਾਰ ਡਾਰ ਹੀ ਡੂਬੇ ਨਰਗ ਧਾਰ ਮੋੜ ਗਿਆਨ ਕੇ ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵਨਾ ਵਿਹੀਨ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਤਾਪ ਕੇ ਸਹਿਤ ਜੋ ਪਾਈਐ ਅਤਾਪਨਾ ਤਾਪਨਾ ਅਨੇਕ ਤਨ ਖਾਇਲ ਸਹਤ ਹੈ ਜਾਪ ਕੇ ਕੀਏ ਤੋ ਜੋ ਪਾਈਐ ਤਾਂ ਜਾ ਦੇਵ ਪੂਜਨਾ ਸਦੀ ਤੂੰ ਹੀ ਉਚਰਤ ਹੈ ਨਭ ਕੇ ਉੜੇ ਤੇ ਜੋ ਪੇ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਈਆ ਤਾਂ ਨਾ ਲਗਾਸ ਪੰਛੀ ਡੋਲਬੋ ਕਰਤ ਹੈ ਆਗਮੇ ਜਰ ਤੇ ਗਤ ਰਾਂਡ ਕੀ ਪਰਤ ਕਰ ਪਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕੋ ਭੁਜੰਗ ਨਾ ਤਰਤ ਹੈ ਕੋ ਭਯੋ ਮੁੰਡੇ ਆ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕੋ

मां सभी मानस की जा सब कह जो पहचान बो करता करीम सोई राजक रहीम होई दूसरो न भेद कोई भू मान बो एक ही सेव सब ही को गोर देव एक एक ही स्वरूप सब कह जो जान बो देहो राम असी सोई पूजाओ निवाजो मानस सब एक पैन एक को भ्रमाओ है देवता देव जज गंधर्व तुरग हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है एक नैन एक कान एक दे के बान खाक माता स्वभाव को रला।

कहते अच वच हुए सब पच उड जाएंगे, कहते नव बीज अच पच को करेंगे भच, केतक प्रतच हुए पचाए खाए जाएंगे, जल कहा थल कहा गगन के गान कहा, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे, तेजुआ तेज में तेज ऐसे तेज लीन ताही ते ऊपर सब ताही में समाहेंगे, कुकत फिरत के ते रोवत मरत के ते जल में डुबत के ते आग में जरत है, केते गंग वासी के ते मदीना मक्का निवासी, केतक उदासी के फरमाए फिरत है, करवत सहत के ते भूम में गड़त के ते सुहा में चढ़त के ते दुखा भरत है, गैन में उड़त के ते जल में रहत के ते ज्ञान के विहीन जग जारे मरत है, शोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी, घस हारे चंदन लगाए हरे चोआ चार, पूज हारे पाहने चढ़ाए हारे लापसी, गा हारे गोरन मनाए हरे मड़ी मट, लीप हारे भीतन लगाए हरे छापसी, गाय हारे गंधर्व बजाए हरे किन्नर सब, पज हारे पंडित तपंत हारे तापसी, तो प्रसाद भुजंग प्रयाद छंद ना रागंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना मोहंग ना ग्रोहंग ना द्रोहंग ना द्वैखंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग ना मित्रंग ना सतरंग ना पितरंग ना मातंग ना नेहंग ना गेहंग ना कामंग ना धामंग ना पुत्रंग ना मित्रंग ना सतरंग ना भामंग अलेखंग अभेखंग अजोनी सरूपंग सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध रूपंग नहीं जाने जाई कछु रूप रेखंग कहा वास्ता को फिरे कौन भेखंग कहा नामता को कहा कहा वह कहा कह बखानो कह क मैं ना आवे ना रोगंग ना सोगंग ना मोहंग ना मातंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग अद्वैखंग अभेखंग अजोनी सरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयंग पराप्रम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अछे आदादनासी ना जातंग ना पातंग ना रूपंग ना रंगे अनमो आद भंगे नमो आद भंगे कितय कृष्ण से कीट कोट उपाये उसारे गड़े फेरे मेटे बनाए अगाधे अभय आद अद्वै विनासी परे अंग परा परम पूरन प्रकाशी ना आदंग ना व्यादंग अगाधंग स्वरूपे अखंडत प्रतापाद अच्छा विभूते ना जन्मंग ना मरणंग ना वर्णंग ना व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे ना नेहंग ना गेहंग सनेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे ना जाते ना पाते ना सत्रे ना मित्रे सो भूते भविखे भवाने अचित्रे नारायंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना लोभंग ना चोभंग भूतंग अभेखंग ना सतरंग ना मित्रंग ना नेहंग ना गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग ना कामंग ना क्रोधंग ना लोभंग ना वोहंग अजोनी अछे आदवै अजोहंग ना जन्मंग ना मरणंग ना वर्णंग ना व्यादंग ना रोगंग ना सोगंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भ्रमंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भ्रमंग सदैवंग सदा सिद्ध वृद्धंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तंग प्रभाद अनुक्तंग प्रतापे अयुक्तंग अछे आदविक्ते अथापे विमुक्तंग अछे आद अच्छा स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहंग न गेहंग न शोकंग न साकंग परे अंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग न जातंग न पातंग न मित्रंग न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मंग न भरमंग न शर्मंग न साके न भरमंग न चरमंग न कर्मंग न बाके न सतरंग न मित्रंग न पुत्रंग स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे कहूँ कंज के मंज के भरम भूले कहूँ रंग के राज के धर्म लूले कहूँ देश के भेष के धर्म धामे कहूँ राज के साज के बाजतामे कहूँ अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहूँ सिद्ध के बद्ध के वृद्ध लाधे कहूँ अंग के रंग के संग देखे कहूँ जंग के रंग पेखे कहूँ धर्म के कर्म के हरम जाने कहूँ धर्म के कर्म के भरम माने कहूँ चार चेष्टा कहूँ चित्र रूपं कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं कहूँ ने गृहं कहूँ दे दोखं कहूँ औखदि रोग के सोग शोकं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत वाणी कहूँ जज गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी साध की तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतंग कहूँ भूमि की भुगत में भरम भुगतंग कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जन विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ के पृष्ठ

रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं बेउबानी कहूं कोप की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूप कहूं अद्र बानी कहूं छद्र स्वरूप कहूं वेद विद्या कहूं काव रूप कहूं चेष्टाचार चित्रंग स्वरूप कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेकं कहूं ब्रह्म धर्म कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्म कहूं ज्वाल स्वरूप जरारा देह कहूं ने देह कहूं त्याग रेह कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आर भी तोर की पारसी हो कहूं पहल भी पस्त भी संस्कृति हो कहूं देद भाग्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं जंत्र रीतं कहूं शत्र धारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बिन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेच्छ भाग्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नाग बानी।

छाला धरे छत्र धारी कहूँ राज साजंग धी राजा अधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता अछे दी अछे आदत वै विधाता ना तरस्तंग ना ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्तंग तू अस्तंग अभूते ता प्रसाद पादड़ी छंद अभ्यग तेज अनुभव प्रकाश अच्छा सर्वद वै अनाथ अन तुट तेज अन खुंड भंडार दाता दुरंग सर्वंग प्रकार अनभूत तेज अन छिज गात करता सदी हरता सनाथ आसन अडोल अनभूत कर्म दाता दयाल अनभूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जा जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय कर्म भरम नहीं धर्म ध्यान जय ने गे ने व्योधवान कहूँ जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय ने गे ने चहन क्षेत्र जय रंग रूप नहीं राग रेग जय जन्म जात नहीं भरम फेक जय कर्म भरम नहीं जात पात नहीं ने गे कही नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं बरग ब्या जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वार नहीं दे ना जय आदंत नहीं रूप रात जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास हाथ नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो ना अंग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग जय नेत नेत उचरंत बे जय अलग रूप कथत कते जय अलग रूप आसन अटोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन आनंद कई कलप ए कई कलप जोग साधन दुरंत तन सीत घाम बरखा संत कई कलप एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधन तद पावत न पार कई उर्दवा देसन प्रबंध कई उर्दमत पावक झुलंत कई सिमरे शास्त्र उचरंत वेद कौ कोप काद कथत कते कई अगन होत्र कई बौन हार कई करत कोट मृत को आहार कई करत साग पै पत्र भच नहीं तदव दे होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या वर्तीत कहूँ वेद जग कहूँ वेद री जग आद करम कहूँ अगन होत्र कहूँ तीर धर्म कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई करत भांत भांतन विचार नहीं नायक तास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरम असो भरम कई अगन होत्र कई देव कर्म कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदव तास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कहूँ सिमरे शास्त्र चरसो कर्म निवली आद कर्म कहूँ हस्त दान कहूँ अश्व वेद मखो बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जक्ष गंधर्व गान कहूँ धोव देव कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उच्चार कहीं भजत एक पग निराधार कई ने दे कई गेहवाद कई भ्रमत दे देसन उदार कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पन प्रजंत नहीं तदव तास पायत न अंत कई करत गोड विद्या विचार नहीं तदव दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान भव करत होम अर जगदान बिन एक नाम एक चित्त लीन फोकटो सर्व धर्मा विहीन साह तोटक छंद जय जम्पो जुगण जुअ जुअंग भय कंपो मेर पयाल भुवंग तब तापस सर्व जले रुथलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अन खेद स्वरूप अभेद अभ्यंग अन खंड अभूद छेद छियंग अन काले अपाल दयाल अस्वंग जय ठटियर मेर अकाल भुवंग अन खंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचंग देव अदेव बरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचंग सरम मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न शोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग भोग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जय रचंग छत्री छत्र छितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैख न दाख न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो द चार करी नव खंड सचियो रस तामस तेज अतेज कियो अनुभव पदा प्रचंड लियो से सिंदर बिंद नगिंद नकंग श्री जाच गंद्र फणिंद भुजंग रच देव अदेव अभेव नरंग नरपाल निरपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग
रचे अंडज सेतज उद भुजंग किय देव देव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जातना पातना जो जुजंग दातना मातना भ्रात सुतंग जय रोगना सोगना भोग भुंग जय जंपय किन्नर जछ ज्वंग नर नार नपुंसक जाय किए गण किन्नर जछ भुजंग दिए गज बाजरतादिक पांद गणंग भूत भग भवान तुअंग जय अंडज सेत जय रजन रज भूम काज पताल जलंग रच पावक पान प्रचंड बली बंजास की ओ फल फूल कली वो मेरा का निवास तंग रज रोज का द चंद्र वृतंग दुद चंद दिनी स दीप दई जय पावक पान प्रचंड मई जय जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छद्र उपाय छपाए दिए जय लोक चतर द चार रचे नर गंधर देव देव सचे अन धूता भूता शूद मतंग अन गाद अभ्याद नाद गतंग अन खेद भेद अछे नरंग जय चार चतर द चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेग रुखंग जय सोग न भोग न जोग जुगंग वो भंजन गंजन आ सिरंग जय बंदर देव अदेव नरंग गण किन्नर जज भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पारना पावत पूर्मतंग अन खंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत भेद पुराण सभा जय वेद कतेव आनंद कह जय भूता भूतना भेद लह जय वेद पुराण कतेव जप सुत सिंध अधोमुख ताप तप कई कल्पन लो तब ताप करे नहीं नह कृपा निध पान परे जय फोकट धर्म सब तज है एक चित कृपा निध को जप है त्यो या भव सागर कोतर है भव भूल न दे पुनर्धर है एक नाम बिना न कोल वृत्ति वेद उचार सार सुति जो वारस के चस के रस है ते भूल न काल फंदा फस है तो प्रसान राज छंद अगंज आद देव है भंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त वृद्ध दा सदयु सर्व सात है अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदयु शुद्ध प्रदा अनूप रूप स्वरूप है अच्छे तेज मानिया सदयु शुद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानिया न राग रंग रूप है न रोग राग रेक है अधोग दाग दक है भूता भ्रम भेक है न तात मात जात है न पाचयन भरन है अधेगा सेगा भेग है भी सदयु विश्व भरन है विश्वम्बर बेसनात अभिषेक विश्व भरन है जमी जमान के विकास सदयु करम भरम है अद्वैक है अभेग लेखना ज्ञानी है सदयु सर्व ठौर में अभिषेक आन मानी है न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण कुरान नेत नेत के बतावई न करम में न धर्म में न भरम में बताई है गंजा देव कहो सुख सिपाही है जिमी जमान के विखय समस्त एक जोत है न घाड़ है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हान है न बान है समान रूप जानिए मकीन मकान प्रमाण तेज मानिए न देह है न गे है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न सात है न दोग है न दाग है न द्वैग है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जज है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न शाह है न शाह को कुमार है न ने है न गे है न देव को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है जन्म है अभेक है न तात है न मात है अखल खंड रूप है छेद है भेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है गंज है भंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है अख्याल है अखंड है न रोग है न सोग है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न सात है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीत है न सोच है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र की विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ लोभ है न मोह है न द्वैग है न भेक है न दुई है न द्रोह है
ना काल है ना बाल है, सदी उद्याल रूप है, गंज है भंज है, भूत है अभर्म है भूत है, हर छेद छेद है सदा गंज गंज गंज है, भूत अभेग बलिया रूप राग रंग है, ना द्वैक है ना भेक है, ना काम क्रोध कर्म है, ना जात है ना पात है, ना चित्र चयन वरण है, व्यंत है अनंत ज्ञानिया, भूम बीज है सदा छेद तेज मानिया, न आद है ना व्याद है, अगाध रूप लेखिया, दो गागत छे प्रताप देखिया, ना कर्म है ना भ्रम है, ना धर्म को प्रभाव है, ना यंत्र है ना तंत्र है, ना मंत्र को लाओ है, ना छल है ना छिद्र है, ना छिद्र को स्वरूप है, अभंग है नंग है, गंज सी विभूत है, ना काम है ना क्रोध है, ना लोभ मोह कार है, ना आद है ना गाद है, ना व्याद को विचार है, ना रंग राग रूप है, ना रूप रे करार है, ना हाव है ना भाव है, ना दाव को प्रकार है, गजाधपी न राधपी करंत सेव है सदा, सितस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा, अगस्त आत जे बड़े तपस्पति विशेखी है, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखी है, अगाध आद देव की अनाद बात मानी है, न जात पात मंत्र मित्र शत्रु सनेह जानिए, सदयु सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रह, तुरंत द्रोह दे के आनंद भांत सो दह, तो प्रसाद रुआमल छंद रूप रागना रेख रंगना, जन्म मरण विहीन आद नाद गाद प्रग सो धर्म करम प्रवीण, जंत्र मंत्र न तंत्र जागो आद प्रग अपार, हस्त कीट बिखे बसे सब ठौर में निर्धार, जात पात न ताजा को मंत्र मात न मित्र, सर्व ठौर बिखे रम्य जय चक्र चयन न चित्र, आदेव दार आनाद अनंत आद अंत न जानी अभिखा देव तुरंत, देव हेव न जाने जे मरम वेद कतेब, सनक आव सन केश नंदन पावी न सेब, जज किन्नर मच्छ मानद मुर्ग उर्ग पार, नेत निरपकारी से सौर मुखचार, सर्व सपत पतार केतर जाप ही जय जाप, आदेव अगाते अनाद मृत ताप, जंत्र मंत्र न वैकर तंत्र मंत्र न कीन, सर्व ठौर रहे विराज हिराज राज प्रवीन, जाज गंधर देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे, वैष्णंग के बिखे विराजे सूत्र भी वनाहे, गुड़ गौर न भील भीकर ब्रह्म से स्वरूप, राजिवद न मध्य उर्द न भूमकाश अनूप, जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन, तीर जात्र न देव पूजा गौर के न अधीन, सर्व सपत पतार के तर जानी है जय ज्योत, शेष नाम सहस्पन नेत पुरन होत, सो सोध हटे सब सुर विरोध दानो, सर्व गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्भ, पढ़त पढ़त थके मह कवि गढ़ गाढ़ अनंत, हार हार कहो सबो मिल नाम नाम तुरंत, भेद भेद न पायो लख्यो न सेव कतेब, देव दानो मूड मानो जछ न जन जेब, भूत भवान भूपत नाद नाद नाथ, अगन बाय जले थले मैं सर्व ठौर निवास, दे गे ना ने सने अभे नाद अजीत, सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व दयन भीत, सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयालद भेक, चक्र चेन्ना बरन जागो जात बात ना भेक, रूप रेख ना रंग जागो राग रूप ना रंग, सर्व लागे सर्व खाए सर्व ते अन भंग, सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को व्रत पाल, दीन बंद याल स्वामी आदेव पाल, दीन पंत प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार, बरन चेना चक्र जागो चक्र चेना कार, जात पात ना गोत्र गाता रूप रेखना बरन, सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को भू को भरन, दुष्ट गंजन शत्रु पंजन परंग पुरम प्रमाथ, दुष्ट अर्था श्रेष्ठ करता जगत में जय गात, भूत भव भगवान प्रमाण देव गंज, आद अंत ना श्रीपद परम पुरग अभंज, धर्म के अनकरम जेते कीन तौन पसार, देव देव गंधर्व किन्नर मच्छ कच्छ अपार, भूम का जले थले में मानिय जय नाम, दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ करता हरता काम, दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद, मित्र पाल शत्रु घालक दीन दयाल मुकंद, अघाव दंडन दुष्ट खंडन कालू के काल, दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल, सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निर्भाम, सर्व भुक्ता सर्व युक्ता सर्व कर्म प्रवीण, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के सर्व कर्म अधीन, सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार, दुष्ट अर्था विस्वर्ता आद्रूप अपार, दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदेव खंड, भूम का जले थले में जब जामंड, श्रेष्ठ चार विचार देते जानिय सब विचार, आदेव पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार,
अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता श्रमान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेद न पावई सिर द्रव मुख चार कोट इंद्र उपेंद्र बना व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके समय गुण चक्रत भे मुख चार आद अंत न मजा को भूत भवान सत द्वाप तृतीया कल युग छत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामन गाय गंधर्व पार हार हार थके समय नहीं पाई है तय पार नारद आदि वेद व्यास मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके समय कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पच्छर पार सो सो थके महा

अत्र के चलैया छत छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया माँ सतरन के साल है। दान के दिवैया माँ मान के बढ़ैया ओसान के दिवैया कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया माँ बुद्ध के दिवैया माँ मानुह के मान है। ज्ञानु के गाता माँ बुद्धता के दाता देव कालू के काल माँ कालू के काल है। पूर बिना पार पावे हिंगला हिमालय दावे गौर कर तेज गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे बोन साधना की देख बादे आरब के आरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने नेज काम है। मरहटा मंगले तेरी मन सो तपस्या कर दृढ़ वह तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फेर हंग के फेरंगा वाली दिल्ली के दलवाली तेरी आज्ञा में चलते हैं। रोह के रोहेले मांग देश के मंगले वीर बंग सी बुंदेले पापुंज को मलते हैं। गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीस नियावे तिब्बती दिहाय दो देह को दलते हैं। जिने तो है ध्यायो तीने

फल फूल सो फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेज कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काउ पे नधीन साध अधीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदारे अपार।

केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुखचार केते कृष्ण अवतार केते राम कहियत है केते ससरासी केते सूरज प्रकाशी केते मुंडे उदासी जोग द्वार दहियत है केते मां दीन केते व्यास से प्रमीर केते कुमेर कुलीन केते जाच कहियत है करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पारता ही ते अपार निराधार लियत है पूरन अवतार निराधार है ना परावार पाइये ना पार पे अपार कह बखानी है अद्वे अविनाशी परन पूरन प्रकाशी मां रूपों के राशि है नासी कह के मानी है जंत्र हुना जात जाकी बाप हुना माए ताकि पूरन प्रभागी सो छटा के न मानी है तेज हु को तंत्र है के राशि को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानी है तेज हु को तर है के राशि को सर है के शुद्धता को घर है के शुद्धता की सार है कामना की खाने के साधना की सान है विरक्तता की बाने के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हु को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रचक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत के क्रोध को अभूत के अच्छे अविनाशी है काम को निंदा के खूबी को दिहिंदा के निमन गरिंदा के तेज को प्रकाशी है कालू के काल है के सतरन के साल के मित्रन को बोकत है वृद्धता की वासी है जोगों को जंत्र के तेजों को तंत्र के मोनी को मंत्र के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के शुद्धता को वास है के बुद्ध को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है ज्ञान को बचाया है मान को दिवैया जम जाल को कटे कामना कर है तेज को प्रचंड अखंड को खंड महिपन को मंड के स्त्री है ना नर है विश्व को भरने के आपदा को हरने के सुख को करने के तेज को प्रकाश है पाइये ना पार पार वार को पार का पाइये ना पार पार वार को पार जागो की जात विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हबसी हल्लबी ध्यावे पूर्वी न पार पावे आशा ते अनास है देवन को देव मा देव को देव है निरंजन अभेव नाथ अद्वै अविनाशी है अंजन विहीन निरंजन प्रवीण के सेवक अधीन कटैया जम जाल के देवन को देवन के देव मा देव के देवनाथ भूम के भुजैया मुहे आमा बाल के राजन के राजा मा साजु के सजा मा जोग को जोग धरैया द्रुम छाल के कामना के कर है के बोधता को हर है के शुद्धता की साथी के काल है कुचाल के शीर कैसी शीरावा छात कैसी छतरा ने छपा कैसी जब कालिंद्र के कुल के हंस निशी सिहारू हुरा हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सेंद रूल के परासी पलाव गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगावानी के रही झूल के चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमावगढ़ काशीपुर सीसा सी सुरंगावानी के सोई आते है हिमा सी हिमालय हर हार सी हल्ला बानेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोही आते है चंदन सी चंपावती चंद्रवासी चंद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोई आते है गंगा सम गंगधार बकांसी बिलंदावाद की रत तिहारी की उजियारी सोई।

जय गुरु गुरु निवास अंतरजामी सच्चे पातशाह जी। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तख्त सचखंड दरबार दी हाजरिया बरदे होए कीर्तन दे सतखा दे संगतालो बिनत माया हाजर होए जिस खजाने विच माया हाजर कीती सो सुख जाने भरपूर करना नाम दान गुरसिखी वाला जन्म सना दे अरुक्ता बख्शनी आसा मनसा संपूर्ण करनी यात्रा सफली करनी।

रास रहाओ हर जिन के वड भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मल त्रपता सह मल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए दृग जीवै दृग जीवास जिन हर जिन सतगुर संगत पाई तिन धर्म मस्तक लखया लखास धन धन सत संगत।

तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जान होई। आसा महला चौथा।

तह डूबियले मन एक न चेतस मोड़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलया रहा नाहा जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा। भाई परापत मानक देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कतै नकाम मल साध संगत भज केवल नाम शरण जाम लाग भाव जल तरन कै जन्म बरता जात रंग माया कै रहा।

जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जच्छन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तुझ ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, शिव गण को शिव गुण सुख दियो, सतरण को पल मोह पद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, छींटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के

धन श्रेष्ठ सब धारे, आप आपनी भूज उछारे, तुम सब ही ते रहत नरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्भकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ, ताका

कह चौपई सम सतरै सैस भणी जय अर्ध सैस फुन तीन कहे जय भादो सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखयाने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाथ दै राख मोहे मन क्रम बचन बिचार चौपई मन अग्नि सह प्रथम मनाऊं किशन बिशन कब हो नह द्याऊं कान सुने पहचान नतन सो लव लागी मोरी पग इनसो महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाह गहे की लाज बिचार अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय देग तेग जग मैं दऊ चलय राख आप मुहे और ना दलय तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान आप ना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा पे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मुहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरिन संघारो प्रथम

को तोहे त्याग कहाँ चित तम धरो अब रीज के देहो वह हम कौ जाऊं बिनती कर जोर करो जब आओ कि औध निदान बने अत हीरन में तब जूझ मरो दोहरा दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए अवर वासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध के चाय सवैया धन जियो तह को जग में मुख ते हर चित में युद्ध बिचारे देह अनित ननित रह जस नाव चढ़ भव सागर तारे धीरज धाम बनाए एह तन बुद्ध सौ दीपक ज्यों जियारे ज्ञान है की बढ़नी मनो हाथ लै कातर ताक त्वार वारे दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नीत स्वर्ग वास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत की ये फल होई आद ब्याज छुए सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड वदी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लौ लिहो सुधारा दोहरा नेत्र तुम के चरण तर सत द्रव तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा पर संग दोहरा साद असाद जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते कू आख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री अस पान कृपा तुमरी कर मना कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ क गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज

नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मंदावणी महला पंजवां। थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सुधारो। जे को खावै जे को भुंचै तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर धारो। तम संसार चरण लगतरिय सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवां। तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग कीतोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई। तरस पया मह रामत होई सतगुर।

विसारेन साध जनक संग भव जल तारेन साकत निंदक दुष्ट किन माहे पिदारेन तिस साहिब की टेक नानक मने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए।

फते गुरु पंथ खालसे जी दिनों दिन चढ़दी कला रखनी सच्चे पातशाह जी महाराज।

निन वस्त्र लग कपड़े पर त्रुपटा ने अमल किया। चारे विद सुचार पड़े गुण तीन चार विचार।